0: vi lutar dig åt den. Appa, nej. För det har tröst i mig.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

usaré a la Belle para...

छुट्टी बाद में।

Jeremy.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा की आवश्यकता है जो चेहरी से नैनों से दो शब्द से हर आत्मा की दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो इसलिए खुश ने माँ चेरी या खुश ने माँ मूरत सदा रही, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती। कितना भी कोई

infarto.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। सुनाया दादा कि कई बच्चे सोचते हैं हम विजयी तो बने लेकिन माला तो 108 की है, तो विजयी बन के माला में तो आ नहीं सके। लेकिन बाप दादा का इतना प्यार है कि आप विजयी बनाओ बनो तो बाप दादा माला में भी लड़े लगा देंगे।

Абсолютно видимым. Yeah.

0: प्राप्त करती है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी

Ese.

Verlernen.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई है? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज कर दी गई, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबकी चेहरे देखते गए, देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितने सर्विस में उन्नत

बात निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए, लेकिन

आत्मान और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर, सेवा के उन्नति में निर्माणता के बजाय बढ़ती है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

रिजल्ट में।

Smash!

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी जयते हैं, अज्ञानी भी जयते हैं कि अब कुछ होना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए, लेकिन ताकत नहीं है। आप बच्चों पे तो संकल्प को पूरा करने की ताकत है। फॉलो फादर है ना, ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़

sa mela. Or ya quiero ya. Ya quiero quebrar.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Oh, अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के चार को नहीं देखते।

0: परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदले करे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

6 karo.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने कई बार इशारा दिया कि समय अचानक और नासिक see you.

0: कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना? क्यों? समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीर स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे, तो अति हलचल समय अचल कैसे रहेगा?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा देख रहे हैं आपके अनेक भाई बहने अपने जीवन से संकल्प समाप्त कर। साथ ऊंचे स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर साथ

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल की मोरली

0: टेंशन बढ़ा है, इसलिए अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना ए लगा दो, बस ऐड कर दो ए, अटेंशन। चलना तो सबको आई, ये तो वायदा है ही पक्का, साथ चलेंगे साथ राज करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

0: Красный. Дорщик тебе. Харсаме. Хасер, хасур. Нейкерсон.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय विदेशी, जय भारतवंश, है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जितना समय जाओ, जैसे जाओ वैसे अभी अभी

Chao.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाता, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मध्य सौगति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Oh, shit.

Sí.

श्रेष्ठ कर्म के कलम से कीजिए।

इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी पाप है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दुनिया वाली कहती है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और वो भी कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। मध्य काल में

Jesus.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सब वाह

Satama.

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देख

वहां शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रोज अमृत वेले जी करो, मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रहे है, पहुंच ही जाएंगे हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प तो नहीं रखते। तीव्र पुरुषार्थ ही बनू, पुरुषार्थ ही तो है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक किस

0: Sabi, समय आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवे, साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा को जैसा समय उस रूप में देते, ऐसे आप सभी भी ऐसे दिखाई देंगे। साधारण नहीं दिखाई देंगे, साधारण प्रैक्टिकल बस ना आती है, लेकिन सभी ऐसे स्टेज में पहुंची है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बच्चों ने

Jockey.

Hellano.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा भी देख रहे थे कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना क्या समय की पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रद तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए पूछो, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। Thank you.

色带金明基 Master Sakharov

0: लेकिन नहीं आवे, मुझे घर नहीं है। कोई ऐसी चलन वापर बोलते भी हो,
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए हैं और आत्माओं की विशेष
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा, वाचा सेवा।

just

por

कोई मांगे नहीं मांगे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई भी थोड़ी किटकिट हो तो अभी चार के पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी करना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है उल्टी फिरती।

0: chauffeur for the day.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई उस समय पर शक्ति नहीं आती, वैसे शक्ति है लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करती है ना तो भी नहीं आती है। मास्टर सर्वशक्तिमान टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सीट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है अपने मन को बिजी रखो, कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे अपने सीट पर से
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस start।

Peace.

Fantastic.

जाए।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को किसी भी बच्चे की

सोच नहीं, मन

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स उठो दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स, चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते।

Teacher's School.

Morning, teacher. Genesis. Ese.

Česko. Sada. Mira baba. To su te jade. A mi babko. Čeri se brta kjegan. Kar sa te na. Kar sa te. देखो अभी तक के रिजल्ट में क्या सभी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही। बाप का पर्तक्य नहीं है, वो अभी भी गुप्त है। तो अभी समय समय पा रहा है, ऐसे योग्य बना रही है। अभी ये माइंड रही हुई गीत तो गाते है, मेरा बाबा आ गया, लेकिन अभी भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हो, ये कार्य बहनों द्वारा या भाइयों द्वारा करा रही।

0: parte quieta. करती
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू अफसाकियत का शुरू।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Este

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब किचरा कहते हैं, किचरा दे दो बस, अच्छी चीज नहीं तो किचरा दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचरा है ना, किचरा कुर्बान करना क्या बड़ी बात। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। परिस्थिति ऐसी थी, परिस्थिति का नाम ही नहीं हिलाने वाली। स्वस्थिति शक्तिशाली सभापति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे। रिश्ते चमक रहे सभी बच्चे चमके हुए दिखाई दे, अभी इसीलिए पर्दा खुलना रुका हुआ है। न्याय वाले चला रहे हैं, पर्दा खोलो पर्दा खोलो। अपना आप ही प्लान बनाओ, परसेंटेज में हो जाती। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो, ज्यादा भले हो कम नहीं हो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही है और फिर भी हम ही होंगे, ये निश्चय विजयी बना दे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा चारों की लकी और लवली बच्चों को देख रहे हर एक बच्चा सने में
3: सने की

Yes.

0: से संपन्न बन गए, सर्वशक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए, ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

was good.

रिजल्ट देखो जो संकल्प किया वो कहां तक पूरा हुआ। अगर परसेंटेज भी हल्की हुई पहले उमंग बहुत होता है, पीछे थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है, वो ढीला होने नहीं देना। करके ही दिखाना है, ये दृढ़ संकल्प करना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं है।

संकल्प सामने लाना। और रोज अमृत वेले

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Oh.

0: जीवन में करनी है। दृढ़ता पूर्वक करनी है, करेंगे। तैयार है? हाथ उठाओ। कुछ भी पेपर आवे, लेकिन चार बातें अपने जीवन में करनी है। पीछे वाले पके है ना, कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख वा सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही, इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पका रहेगा ना? सारे दाता रहम दिल बन, सहयोग तो उससे किनारा या करना नहीं करना, कृपया करना। पर्वत के ऊपर कभी करना नहीं की जाती है। सहारा दिया जाता, शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलते, इसमें अपने जमा हुई शक्तियां चली जाती, इसलिए शुभ चिंतन की स्वमान की कोई ना कोई होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ, कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। स्वमान अमृत sirenesse. Vierat sankalapme.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Oscar.

çok

0: समर्पण दामहीन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

funny.

Iskelye.

Apísame.

stretching power. बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सके। सिर्फ

अपने में चेक।

Suck.

是这样。It's got sadness.

Miriam Sal.

serapi akar mana me putih me kisipi atma kiblet yang kisipi

उसे अतक

0: Chamacanica. Parivartan. Karnika. Aur attention.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: same Kushtima.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों की दुख की कठिनाई बड़ी वर्तन हो जाए। दिल से रहम इमर्जो क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है। इतने सभी ब्रह्मांडों की साइलेंस की शक्ति रैम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही जाते हैं, चिल्लाते हैं फिर चुप।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sí.

विभाग दादा 20% छुट्टी देते है। मंसूर मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक सच्ची

टीचर्स बताओ, हो सकता है 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। युद्ध नहीं विजय मुश्किल है कि इजी है। हाथ उठाओ, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट बनेंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकते हैं, कर सकती है ना। 80% लेना ही, फिर भी बाप दादा हल्का कर रहे हैं, 20% छोड़ रहे हैं। क्यों बाप

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसके बाप दादा सभी बच्चों

0: अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को रहमत है, बच्चों का दुख अशांति का वायुमंडल देकर, और बाप और आप जानते हो कि ये तो अति में जाने ही है, बिना अति के अंत नहीं होता। ऐसे समय पर आत्माओं को ये अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि ये बाप की प्रतिज्ञता कब और कैसे होगी, तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचिए। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारियों का, ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाने का समापति करनी है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बालक सदा मालिक होता है।
2: कितने वर्षों से जुड़ा
1: हूँ? अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
2: मेरे ऊपर निर्भर है, उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जो मेरे ऊपर निर्भर है
1: वो भी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: क्लियर करो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कहीं बच्चे

0: तोर हाथ बच्चा डबल राज अधिकारी है, कान लाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक मत होना अर्थात सफलता, सफलता आप बच्चों का हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार, उसको यूज करो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रही है कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। सभी बच्चों को अभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के लोग

Escucha este video.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बोलने वाले बने

0: स्वरूप बने हो तो बाप बच्चों से पूछ रही है, बचपन का वायदा याद है, कितना सहज करके दिए। एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरी परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार। परिवार में भी एक दो में आत्मक सने, सने नहीं आत्मक सने, बाप दादा याद दिला रही है, जन्म के वायदे। सभी ने पढ़े उमंग उत्साह से, बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, धन मन धन सब आपका। बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया, आपने बाप को दे दी है ना, कि वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहती है, रो रियान करती है ना, तो कहती है मेरा मन परेशान रहता है, मेरा मन आया कहां से, जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहां से। आप सभी तो कुछ नहीं रहा, बिन कोटी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना, याद दिला रहे हैं। सबको परमात्म खजाने से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी पाप ने ले ली। किस शब्दों में आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी होई। सर्व याद करो और आपने
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आपके पांडव जो गए उनका भी यही दिल में संकल्प रहा कि हमें जो पांडव पांडव को विजयी कहा जाता है तो पांडवों का लक्षण और है रामी और है भी कि जो गायन है विजयी पांडव
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जुदा ना थे न जुदा रहेंगे, विदा ना होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ।

0: शरारत कर रही है। जमा का शरारत आप ही कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा है, मैं जा रही हूँ, डिनर आ तो डिनर।

0: मिले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज सम्राट बाप अपने समृद्धि स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में सने की लहर लहरा रही है। विशेष कुछ विशेष स्मृति दिवस में अर्थात शनि के दिन में शनि में समय रहे ऐसे समय रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

विश्वास।

0: Jinoko. Up. Sa gas tingi. Woi aapke bhagat banenge.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना, कोई कैसा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे, नहीं सही।

0: योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के सदै सहयोगी बन हर एक को आप अटेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। तभी हम लोगों की
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Emergency. Mira, papá. Tayalo, kirpalo, papá. Oh, God.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज क्या करेंगे? शिवा का खाता भराओ, तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्रह्मांड जीवन है मसीह की, संगम युग है मसीह का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है। चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो, तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्रह्मांड जीवन अर्थात वाह वाह है ने शरीर व्याधि में भी है ने वाह, ये भी बहुत उतरता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम अशर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो हो नहीं है, पहले से पता है ये होना, लेकिन बाप समान रिश्ता बनना ही है। I'm sorry.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दही अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा के मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करनहार पर बाप सम्मान न्यारे और प्यारे, बाप सम्मान बनने चाहे तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मधु

0: ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारी है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार।
1: Fuck.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सबके आगे अपना अनुभव सुना। नास्तक से आस्तक कैसे बना, बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही ब्रह्मा कुमारिया देती है, ब्रह्मा कुमार देती है, वो राइट कैसे उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोलने के लिए। अगर एक पॉइंट रही हुई है गीता का, भगवान कौन, वो भी सिद्ध तो होंगे ना। जब ये सिद्ध हो तब भगवान आ गया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है? So

स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम सर

0: Μισλήμα αυτά τα νεπελεμικά. Και φαρτωμάνσαμε. Ανεπαβή μωρά. Πανανά.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे वो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस
2: ऐसी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुमारियां क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में साथ में बिठा।

0: सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, थोड़ा ही हिसाब किताब पूरा करके, अगर आवश्यक हिसाब है, चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं, तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, कईयों की सरकमस्टेंस है, लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं, सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना, मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, भोली भाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहे। सिर्फ नौकरी नहीं, स्व उन्नति में अपने सरकमस्टेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किटकिट वाले नहीं बनना, योग्य टीचर, क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेते हैं लेकिन सेंटर पर जाती है कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो हैंड्स तो नहीं बन सकेंगे ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी, अपने को एडजस्ट करने वाले, एडजस्ट करने वाली हो ना, क्या अगेंस्ट होने वाली है, अगेंस्ट नहीं हो किसी के प्रति भी, एडजस्ट होने वाली। अच्छा तो ऐसी कुमारियां बनेंगी, हाँ तो रहो टेस्ट होने वाली, सोच के हाथ उठाओ। अच्छा, इंग्लिश नहीं जानते, सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाले, निर्विघ्न तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं। अभी हैंड्स के कमी है, बाप दादा सभी को कह रहे हैं, कुमारियों को। मददगार बनेगी ना, हाथ उठाओ जो मददगार बनेगी। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ, निर्विघ्न मददगार, निर्विघ्न। फिर इन एडवांस मुबारक को, मुबारक को, मुबारक।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में

बच्चों के मन में खुशी

起来，把头发没安呐，而他不是。Say it.

Mother One Man.

0: भी बाबा की बातें चलती है तो मधुबन का पावन स्थान, खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन पावरफुल, क्योंकि यहाँ विशेष छुट्टी वालों को याद दिलाया जाता है, इसलिए मधुबन में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दादियों ने डबल विदेशों को भी मर्ज किया, डबल विदेशी उठो। Yeah, they had it low.

0: Services. Tadyo ke. Patle. Tati keri. Tu tati neka. Ke moche. Double with shoki. अच्छी लगती है क्योंकि जब आप वहां थे और इनोकी सीजन शुरू हुई तो मैंने देखा इनोको मधुबन में आने के लिए टिकट ऐसे ऐसे इकट्ठा करके आई है तो मुझे बहुत प्यार आता था और डबल विदेशों का मैंने देखा उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा था आने से ही
1: बहुत अच्छा दिखा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा से नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते। बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगा देखा खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगा। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चिल्ला रही है, रैप करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है, उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी भरोसे होती है, वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के डाल डालियों और पत्तों की पालना करना। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्मभाव रूपी डाल डालिया या पत्तों को सकाश दे रहे। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते, तो उनके आप बच्चे साथी वो भी मास्टर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दिल में चंदा तो लहरा लिया और कमरे का चंदा भी लहरा लिया जगह जगह पर। अभी पार्थक्यता का चंदा जल्दी से जल्दी लहराना ही है। यही फिर तलो दृढ़ प्रतिज्ञा का फिर तलो के जल्दी से जल्दी ये चंदा नाम बाला का लहराना ही है। अभी तो की दुनिया को मुक्ति धाम में जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत दुखी है ना तो रहम करो। अब तो कसे चुराओ सबको दिलाओ क्योंकि परेशान बहुत है। आप शान में हो वो परेशान
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा सदा साथ रहना। अच्छा ताना पाना ताना दे दिया, अच्छा दिल भी दे दिया। दिल बाप को दिया, अगर दिल दे दिया तो आपके पास दिल आपके लिए नहीं है। बाप जैसे डायरेक्शन दे वैसे तो बताओ, जिसने दिल दिलाराम को दे दी वो कभी किसी भी आत्माओं से दिल लगेगा नहीं। तो दिल लगी की बातें याद रखना, कोई आत्मा
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाने जमा होता जाए। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है। हर खजाने का चार्ट देखा तो क्या देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। समय का मैं तो चलते चलते कभी कम इमर्ज रूप में होता।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: बच्चों के दीप जगेंगे, कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते है ना। आप विश्व में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले खजाने के तीन खाते जमा करो ये पहले बताए, तो रिजल्ट में क्या देखा? तीन खाते कौन से है वो तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रही है। एक स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे, बिना बिना संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और सेवा में

Foretti. सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

kysse mig bara.

Quelques.

Super.

Radio.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप तो खुश रहते।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

casino. Peace.

convertir en ti. Och så svarar hon.

इसकी और आवश्यकता क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं किसी स्वरूप की अनुभूति में खोजे अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करते हैं। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की अथॉरिटी इस अनुभव के अथॉरिटी का अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो अनुभव स्वरूप स्थिति सदा समय हुई रहती है उसकी शिकिल चलन सेवा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्रह्मा कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी, सोचेंगे 2000 तो सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले सुना देते हैं, अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में। चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो, जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा जमा कर सको उतना करते जाओ। क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जवाब पूछे बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे होना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

उसी फरमान राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। लेकिन एक अटेंशन रखना कि अगर मानो आपका आज का दिन जमा खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त हो जाएंगे ना। ओके, दिल शिकस्त नहीं होना और ही समझो के अभी भी हमको चांस है जमा कर। अपने को उमंग उत्साह मिला अपने आप से रेस करो दूसरे से। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे दिलचस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी समय है जमा का। अभी टूलेट का बोल नहीं लगा, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है ना, तो अच्छे पूछा रहते क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बनाना है। समझा, दिल शिकस्त तो नहीं होंगे। फिर पाप को मेहनत करनी पड़ेगी। पत्र लिख

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा सुनो, पापा और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, रोब क्यों किया? मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, कराया गया मुझे। अभी पाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना?

0: लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वाचा की सेवा भले करो, तुम दाम से करो, लेकिन भूलता नहीं है, सुना हुआ भूल जाता है।

0: से कात गाड़ी नहीं बन सकते तो अनुभव संबंध में लाने वाले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने के वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे में, अगर आप फोटो निकालो ना तो आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये दो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा

0: मन के मालिक। जिस मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बांह को चलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही? अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समृद्ध बन वायुमंडल में समृद्ध बन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार। करना ही है, करेंगे देखेंगे ये के नहीं चले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा में नवीनता क्या लाएं, जो अभी तक सेवाएं चली हैं उसके अलावा अब नयापन क्या लाएं?
2: नयापन ये लाओ जो आने वाली है और लोगों नजदीक, कम से कम स्टूडेंट तो बने, कभी कभी आने वाले संपर्क खुद बनावे, दिलो वे ऐसी रिजल्ट आने वालों की होनी चाहिए। अभी आए अच्छा है,
1: संदेश तो बहुत मिल गया सबको, बहुत जा भी रहा है और मिल भी
2: गया। अभी नजदीक आना, कम से कम स्टूडेंट नहीं बने लेकिन आने वाले मिलने वाले सुनने वाले तो बने, कम से कम बोलने तो।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ, बढ़ाते चलो। एक दो के साथ ही है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, से प्यार है तो बाप को किससे प्यार है। दीवर पुरुषार्थी बच्चों,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: प्रलोभन ये नहीं कि सेंटर के

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ese beat.

Sabika attention.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है।
2: साक्षात्कार होना है।
1: पृथ्वी पर आ गए हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभकामना दो। स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में दाता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। ओ मां गुस्सा के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना दादिया स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलती है, उसको रिकॉर्ड देना अति आवश्यक है। इसमें समझते भी हैं कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही करेंगे, लेकिन ऐसी भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कामन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं। और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वो आगे निकल भी सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एक सैंपल के रूप में है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

Shh.

Hey.

ich

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sun.

そっか。

Marco.

Necesito un abalón coqueteo.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Hey.

Christmas.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ya iyi. Kapsam ebar. Vücey bansı. Esse é só...

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Leave the hammer upstairs.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी कर्म आरंभ करते हो चेक करो

मालिक बन के, मालिक बन के अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाला कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली आत्माओं साधारण कर्म शुरू हुआ। समृद्धि स्वरूप से कर्म आरंभ न करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क।

जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सेटोगे फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी किसी सेट होके फिर हर कार्य करो इस मालिक बनकर

skin shinier. Result.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे

0: recipe. Ek minute nikal. Is abhyas ko pakka kar dijiye.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो, जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे स्व स्थिति और सेवा दोनों कंबाइन, परसेंटेज में कोई कमी नहीं हो, कभी सेवा की परसेंटेज ज्यादा नहीं, बैलेंस सदा। आपके बैलेंस द्वारा विश्व के आत्माओं को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अभी ब्लेसिंग चाहिए विश्व की आत्माओं को, मेहनत नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो आपका बैलेंस सुधै ब्लेसिंग दिलाएंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shattered this.

दूसरा क्या करती है? ये तो चलता ही है, ये भी तो करता है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ? वो कुएं में गिर रहा है और आप भी गिर के देख रहे हो, ये समझदारी है। अभी एक बात, 18 जनवरी तक बाप दादा पुरुषार्थ के लिए होमवर्क करेंगे, करेंगे, हाथ उठाओ, करेंगे, कुछ भी हो जाए, बदलना पड़े सामान।

0: पांच तत्वों के प्रति आप शुभ भावना रखते हो और ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकते। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। ये शब्द समाप्त करो, मुझे बदल के दिखाना है। मैं बदलूंगा और भी बदलेगा, अवश्य बदलेगा। इस निश्चय और शुभ भावना से चलो, फिर देखो जल्दी जल्दी अपना राज आ जाएगा। तो ये 18 तारीख को दो बातें हैं, सदा के लिए धारण कर ली। ये बाप दादा नहीं कहते हैं कि लिख के सिर्फ भेजो, प्रतिज्ञा करने की फाइल लिखत वाले बाप दादा के पास बहुत फाइल पड़ी है वतन में। प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ता का संकल्प के रूप में ये दो बातें धारण करनी है। ठीक है टीचर्स, करनी है ना? अच्छा, और माताएं हाथ उठाओ, करेंगी करेंगी, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा उठा तो रही है। अच्छा पांडव उठाओ, पांडव भी उठा रहे हैं। ठीक है, बाप दादा तो रोज देखता रहेगा, बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती। ठीक है ना? अच्छा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं। ऐसे आपके भी तीन

0: amar. Felicidade. Amor de vida. Interrumpo-me.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन। चलते चलते

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अंदर क्या हालत है, पैर का शो

0: 亲什么吧我这不拿而打的不去给
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा बच्चों से